परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शवंदन विराजमान श्रेय से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब विदुषी महासत्यवृंद निरंतर नव तत्व की यात्रा पर चलने वाले यात्री श्रद्धालु श्रोतागण, कल का प्रयोग किया है? नहीं, नया प्रयोग आज आने वाला नहीं है, पर कल का प्रयोग की रिपोर्ट ले रहा हूं, किया है क्या ना? और बस कल की बात को मैं केवल 2 मिनट में पूरी कर करके आगे के विषय पर चलूंगा। इतनी एक क्रिया के भी आप मास्टर बन गए, तो ना भय की समस्या है, ना क्रोध की समस्या है, ना टेम्परेचर की समस्या है, ना हेडेक की समस्या है। चाहे अपने मन को बदलना हो, चाहे अपने भावों को बदलना हो, चाहे अपने एटीट्यूड को बदलना हो, चाहे अपने फीलिंग को चेंज करना हो, उस पर सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इतना कर लेंगे अंदर का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? और संक्रमण के सैकड़ों प्रयोग जिन शासन में दिए हैं, मैंने केवल एक प्रयोग आपको बताया है। परिश्रम पर्व की पूर्णता के बाद मैंने मेरे तरीके से कर्मा का शिविर लेना है, पुरुषाकार का लेना है, अष्टमंगल का लेना है, डिस्कवर का लेना है, सारे शिविर पेरेंटिंग के लेने, सारे शिविर मैंने शुरू करने हैं। और शुरू करना है मैंने एक छोटा सा उद्योग, गुरुदेव के पीछे 1008 लिखा जाता है, बराबर है? और मुझे इस चतुर्मास में गुरुदेव के चरणों में अरह मिज्जा के 1008 टेनर समर्पित करने नए, और उनके ऑफलाइन क्लास नगर के या बाहर के नहीं, नगर डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम, और उनके क्लास भी मैंने परिश्रम पर्व के बाद शुरू करने हैं। आज बात है आश्रो संवर निर्जरा बंध जीव अजीव, मोक्ष की थोड़ी सी चर्चा शुरू करनी मुझे। किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, ये विश्वास जिसके मन में है वो मोक्ष में जा सकता है। जिसको ये लगता है कि नहीं, अब ये समस्या सुलझ ही नहीं सकती है, ये सुधर ही नहीं सकता है, वो पुण्य को स्वीकार कर सकता है, पाप को स्वीकार कर सकता है, जीव को स्वीकार कर सकता है, आश्रो संवर बंध निर्जरा सबको स्वीकार करता है, बस मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है। जो मोक्ष को स्वीकार नहीं करता वो मोक्ष में जा नहीं सकता। और आप मोक्ष को स्वीकार करते कि नहीं करते उसके अपने डेली लाइफ में हम देख सकते हैं। और ये वाक्य इसलिए कि अपने मुंह से ये सेंटेंस बंद हो जाने चाहिए। उसमें सबसे पहला सेंटेंस है उरी सुधरन की संभावना कोनी। हेलो, मैक्सिमम जितने भी मैरिड लोग हैं उनकी अपने साथी के विषय में पक्की धारणा बनी हुई है कि अभी इनमें कहीं सुधार होने की संभावना, जितना एफर्ट्स लगाना था मैं लगा लिया, अभी तो जिसा है उसो। हेलो, ऐसा सोचने वाले लोग अपने मोक्ष मार्ग के रास्ते पर दीवार खड़ी करते हैं, दरवाजे बंद नहीं करते, क्या करते? दीवार खड़ी करते हैं।
कोई सुधर नहीं सकता, ये सोच ये बताता है कि मैं भी नहीं सुधर सकता। यहां बीमारी री ट्रीटमेंट है इसको नहीं, ये सोच जिनका है वे मोक्ष के रास्ते पर दीवार खड़ी करते हैं। और जिसके मन में एक विश्वास है कि यस ये मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, समझ लीजिए उसका मोक्ष में पहुंचने का समय बहुत कम बचा है। एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा, महाराष्ट्र में आप लोग भी और मैं भी और कहीं पर भी हो, जिस समय देश में कहीं पर भी हिंदू राज्य नहीं था, दिल्ली से लेकर तो कन्याकुमारी तक मुगल शाही, निजाम शाही और आदिल शाही, जितने हिंदू थे सारे इनके लिए काम करते थे। ऐसे समय में एक छोटे से बच्चे के मन में आता है कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है, शाहजी राजे ने भी प्रयास किए थे लेकिन बाद में छोड़ दिए थे, और बाद में उन्होंने वो किया कि आदिल शाही, मुगल शाही और निजाम शाही को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उनका बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको ये पता है कि देश में आज कहीं पर भी हिंदू राज्य नहीं है और सारे हिंदू राजा मुगलों के लिए, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, और उस समय वो सोचता है कि हिंदवी स्वराज्य स्थापन करना है, और केवल सोचता ही नहीं है, 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में स्वयं का राजा के रूप में रोडेश्वर के मंदिर में अभिषेक करा लेता है। उस समय कौन उनके साथ, घर वाले भी उनके साथ खड़े थे क्या? लेकिन उसके मन में विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके रहूंगा, किया या नहीं किया, पॉसिबल था क्या, पॉसिबल था क्या, नहीं था, इम्पॉसिबल पॉसिबल है, और उसको प्रैक्टिकल जो करके बताता है वही युग पुरुष होता है। और ये विश्वास तुम्हारे में जगाने के लिए परिशन पर्व आ रहा है। जो कॉन्फिडेंस तुम लोग खो चुके हो, सबसे बड़ी कमी रामेश्वर, सबसे बड़ी कमी यदि हमें कोई आई है, हमने कई बातों को स्वीकार कर लिया कि यह हो नहीं सकता है, और इसलिए जहां एक समय पूरी सघन जैनियों की बस्ती थी तुम्हारे नगर सिटी में, आज वहां जैन लोग घर छोड़कर के दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्यों? नहीं, अठनेरी सगापन, अठनेरी सगापन, ये भगोड़ा वृत्ति, रणछोड़ दास वृत्ति,
ये आत्मघाती वृत्ति। बेटा शांति से उठने बैठ जा, उठने बैठ जा, उठने बैठ जा, उठने बैठ जा, बैठ जा। ये तुम्हारे से दूर करने के लिए परिश्रम पर आया है। अगरा की नजर कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित आ सकते हैं, ये कौन सोच सकता था? हर पल पर मौत तैयार थी, लेकिन जहां मौत तैयार थी वही छत्रपति की सोच में मुक्ति तैयार थी। पूरा नजारा यदि एक बार याद करोगे कहीं पर भी 1% एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती, सोचते ही डर लगता है। लेकिन इतना एक्यूरेट प्लानिंग और सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन, इसके पीछे केवल एक विश्वास था, कि मैं मुक्त हो सकता हूं। वो विश्वास आप में जगाने के लिए परिश्रम पर्व आया है। आज मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं आप पर। लेकिन आज एक सोशल कॉन्फिडेंस हम लोग खो चुके हैं। और एक समझौते का, एक गुलामी का जीवन जीने के लिए स्वयं को तैयार कर चुके हैं। नहीं, ये तो पांचवा आरोह है, अपन कहीं नहीं कर सका। सबसे बड़ा सेंटेंस क्या है आपका? ये कौन सा आ रहा है? पांचवा आ रहा है। पांचवे आर्य में एक भव अवतारी जीव होते ही तुमको पता नहीं क्या? और पांचवा आरा केवल तुम्हारे लिए आया है क्या? उनके लिए नहीं आया क्या? केवल जैनियों के लिए पांचवा आरा है क्या? ये काल की संकल्पना केवल जैनियों के लिए है कि यूनिवर्सल है? तो उनकी प्रगति हो रही, तुम्हारी अधोगति क्यों हो रही फिर? ये तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने के लिए इस बार का परिश्रम पर्व है। I believe it कि जिस दिन तुम्हारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा, तुम सारा नक्शा चेंज करके रख सकोगे। प्रॉब्लम तुम्हारे स्किल का नहीं है, तुम्हारे माइंड सेट का है। तुमने इसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, अभी तो इसको सोन वाला है, ऐसा ही होगा। आज आवश्यकता है कि इस सोच को चेंज करने की, इसलिए परिश्रम पर्व आया है। और मैं आपसे आज प्रेम पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, कल बुद्धि पूर्वक करूंगा और 5 तारीख से हंटर से करूंगा। अब तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हंटर की भाषा उपयोग में लाऊं तो तुम्हारी मर्जी, मेरी इच्छा है कि तुम 2 भाषा में समझ जाओ। कौन सी? प्रेम की और बुद्धि की। हेलो, क्या संभावना है? प्रेम की भाषा में समझ जाओगे, बुद्धि की भाषा में समझ जाओगे? मैं थाने पूछ रही हूं, 2 भाषा काम में आ जाएगी?
कि तीसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं ना। तो फर्स्ट प्रपोजल है, कल से तैयारी कर लेना। इस बार पर्युषण पर्व में व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस मुझे यहां चाहिए, इधर भी इधर भी। कौन सा ड्रेस पहनना तुम तुम्हारा देखो, साड़ी पहननी कि पंजाबी ड्रेस पहनना कि क्या पहनना तुम तुम्हारा देखो। और मैं चतुर्मास समिति को भी कह रहा हूं, मुझे नीचे भी व्हाइट चाहिए। हेलो, कौन सा ड्रेस? व्हाइट ड्रेस। और उसके लिए 8 तारीख का वेट मत करना, नहीं तो मेरी बात का जवाब देते चले जाना। तुम्हारे हर त्योहार का ड्रेस स्पेशल है कि नहीं? हाँ, थीम थीम ये। नहीं भैया, त्योहार की थीम नहीं, इनकी इनकी थीम कठेरे मालूम था ने। हाँ, वो म्यूजिक नाइट है ना, ये इनके जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं उस पत्रिका में छपा रहता है कि ये ड्रेस की थीम है, ये शोले की थीम पर आना है। नहीं, वो ज्यादा जानकारी रखे, मैं थोड़ी सी रखू है ना। आपके हर त्योहार का सेलिब्रेशन के समय का ड्रेस कोड डिफरेंट है या नहीं है बोलते जाइए ना, है ना। तो पर्युषण पर्व ये त्योहार है या नहीं है, तो इस त्योहार का भी ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिना ड्रेस कोड के कोई त्योहार तुम सेलिब्रेट कर सकते हो क्या? बोलिए। तो सबसे पहले क्या चेंज होना चाहिए? ड्रेस कोड। और सिंपल ड्रेस कोड दिया मैंने, व्हाइट एंड व्हाइट, इधर भी व्हाइट इधर भी व्हाइट। ऐसा लगना चाहिए कि सारे बगुले आ रहे हैं। संत तुकाराम के कीर्तन में छत्रपति शिवाजी महाराज गए और मुगलों को खबर पड़ी और मुगलों ने घेर लिया और वहां एक ही मंत्र गूंजा, सब शिवाजी, सब। अब किसको पकड़े? तो कल से क्या है, सब मोक्ष यात्री, सब मोक्ष यात्री, जिन शासन प्रेमी पर्युषण पर्व के भगत आराधक ये मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है जब मैं तमिलनाडु में था। वहां एक मंदिर है जहां सभी केवल रेड कलर पेंट करके जाते हैं, याद आ रहा? केवल रेड कलर। विहार कर रहा था उधर से, देखता हूं बस में से जो उतर रहे सारे रेड। थोड़ा आवाज कर रहे थे, वड़वनों को पुरसाद कर रहे, पूरा रेड कलर, पूरा रेड कलर, जिधर देखो उधर रेड कलर, रेड कलर। तब से दिमाग में था कि एक बार कम से कम पर्युषण पर्व में तो अपने को कलर चेंज करके रहना है। और आपको याद तो होना का ही है ना कि मैंने प्रवेश के दिन आपको कह दिया था कि मेरे सारे सपने में यहां पूरे करने के लिए आया हूं। और गुरुदेव की भूमि पर मेरे सपने अधूरे रह जाए, हेलो, हाँ, यस, व्हाइट एंड व्हाइट।
पॉसिबल इम्पॉसिबल, अबर था ने पॉसिबल वाट रही है। ते प्राइम मिनिस्टर हो कि कलेक्टर हो, इधर बैठे हुए कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर है? इधर बैठे हुए घर के फाइनेंस मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर है ना। और जिनके घर में नहीं चलती उन्होंने मुझे आकर के ना, आने दो मैं देख लूंगा। जिनके घर में सुनी नहीं जाती उन्होंने मुझे आकर के कहना, मार साहब हमारे घर में कोई सुने को नहीं, मुझे आकर के देना, मैं देख लूंगा क्या करना है। इस बार का परिशन पर्व अपने जन्मोत्सव को नेवर बिफोर किया है, अपने जाप को नेवर बिफोर किया है, तो परिशन पर्व भी पक्का ना। और उसका पहला सूत्र क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? इसका केवल एक लक्ष्य है, आपके कपड़े चेंज करना मेरा लक्ष्य नहीं है, एक विश्वास जगाना है कि हम जो आज तक नहीं किया वो कर सकते हैं। माइंडसेट चेंज करना कि हम कर सकते हैं, एक माइंडसेट चेंज करना है, एक नजारा दिखना चाहिए। ये परिशन पर्व चल रहा है, ये मैसेज जाना चाहिए तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ से। आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा और पढ़ करके तुम्हारे ध्यान में आया नहीं आया मुझे पता नहीं। कल या परसों के दिव्य मराठी में सितंबर माह के सारे स्पेशल सेलिब्रेशन की दिनों की न्यूज छपी है और उसमें दही हंडी का जिक्र है, बाकी सबका जिक्र है, परिशन पर्व का जिक्र नहीं है। देख लेना एक बार जाकर के और पूछना दिव्य मराठी वालों से, ऐसे पूछना कि वापस ये गलती वो कर नहीं पाए। यह अनुल्लेख परिशन पर्व का, ये निग्लेशन, ये उपेक्षा, जिस समाज के सपोर्ट पर तुम्हारा पेपर चलता है और उस समाज के पर्व का जिक्र तुम्हारे कैलेंडर में नहीं, ये तुम्हें स्वीकार हो सकता है, मुझे ये स्वीकार नहीं है। जिस समय ये पेपर कोई पढ़ेगा मैसेज क्या जाएगा कि यहां जैनियों का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। और कहता हूं जिन्होंने फुल पेज ऐड दिए दिए मराठी को, उनको पूछना चाहिए, ये नजरअंदाज करना मंजूर है नहीं है। और ये हिम्मत क्यों हो पाई उनकी? क्योंकि हम अपने आप को शक्तिशाली के रूप में प्रेश नहीं कर रहे, हमें लेकर के एक ही लोगों की धारणा है, कुछ भी करो ये कुछ नहीं बोलते।
कुछ भी चल सकता है इनके यहां। ये मानसिकता तुम्हारी भी चेंज होनी चाहिए, उनकी भी चेंज होनी चाहिए, इसलिए पुरुषन पर्व का सेलिब्रेशन करना है। कल श्री कृष्ण से मुलाकात होगी। किससे मुलाकात होगी? कल श्री कृष्ण से मुलाकात होगी। कल दही हंडी है ना, तो कल श्री कृष्ण से मुलाकात। कल का प्रवचन का सब्जेक्ट रहेगा श्री कृष्ण से मुलाकात। आज परिशन पर्व की बात कर रहा हूं। चेंज होना है नहीं होना है, चेंज करना है कि केवल चेंज होना है? केवल चेंज स्वयं को करना है कि सबको करना है? केवल होंगे कि करोगे? यस, यदि पूरे देश में मुस्लिम की सत्ता होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य का सपना सत्य करके बताते, जो सपना देखना हिंदुओं ने छोड़ दिया था, जो सपना भी नहीं देखते थे वो सपना भी सच करके बताया, तो तुम और मैं भी महावीर की संतान है। यस और नो? तो महावीर जो पॉसिबल नहीं उसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अरे जी संतान उनकी है, देख करके ही बताना है। ये आश्रम सोशल आश्रम,

पर्यूषण पर्व यूनिवर्सल पर्व है, और इसके वारसदार हम हैं, इसकी विरासत हमारे पास है। ऐसी बार नगर से वो शुरुआत होगी गुरुदेव के भूमि से कि पूरी दुनिया सीखेगी कि पर्यूषण पर्व कैसे मनाया जाता है। नगर ने गेम चेंजर बनना चाहिए। हेलो, थे तो इस सब बोल रहे कि गेम प्लेयर बनने की तैयारी करने थके। नगर ने गेम चेंजर बनना चाहिए और आप बन चुके हो, जन्मोत्सव में आप गेम चेंजर बन चुके हो, जाप में आप गेम चेंजर बन चुके हो। यदि गुरु भक्ति में तुम गेम चेंजर हो सकते हो तो शाश्वत पर्व में तो गेम चेंजर होना ही चाहिए। 7 तारीख को अठाई की धारणा होगी, 8 तारीख से पर्यूषण पर्व शुरू होगा। छह तारीख तक आपके नाम समिति के पास, तीर्थेशुषी के पास पहुंचने चाहिए, जिससे 7 तारीख की व्यवस्था करने में उनको सहजता रहे। और कैसी धारणा कराते आप लोगों ने देख चुके हैं, जिनकी जिनकी उस समय मन में रह गई और जिनको जिनको लगता है कि गुरुदेव के भक्ति में केवल 28 सोरवी होती है, तो सावन में हो गई, भादवे में कर लो। जब नहीं कर सकते थे तब कर ली, अब तो ऐसे ही पर्यूषण पर्व में 8 का नजारा होता है। तो 7 तारीख को 8 की धारणा होगी। सारी धारणा की दवाई तीर्थ शिष्य ने संभाल कर रखी हुई है। हाँ, वो तेरे रूम में देखता हूं ना मैं, यानी उसके दिमाग में ही कि पर्यूषण पर्व में नगर वाले 8 करेंगे, उसके दिमाग में ही, तभी तो उसने बना के रखा है। खाने वाला कोई आएगा तभी तो खाना बना के रखते हैं। मालूम रहे खावन वाला कोई आवन वाला रसी कौन बनाई ना, अब उसने रसी तैयार करके रखी है, अब उसका नगर वालों पर भरोसा है। हाँ, किसका? मेरा भरोसे की बात तो छोड़ ही दो तुम, है ना। मेरा भरोसा इतना ही है कि मैं गुरुदेव के भूमि पर तुमसे कुछ भी करा सकता हूं ना? और आज तक के पूरे नगर का इतिहास एक ही बना हुआ है। जो नगर वालों ने सोचा नहीं, मैंने सोचा नहीं, वो नगर वालों ने करके बताया है। तो मेरी विश्वास की बात मत करो, जितना मेरा विश्वास तुम्हारे पर है उतना तुम्हारा तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। हाँ, डेंजर है। तो थाने का आशय प्रवीण ऋषि ने पहले कौन लोग क्यों उतारिया है? हाँ, क्यों तो पहले कौन प्रवीण ऋषि डेंजर है, चेंजर चेंजर एंड डेंजर, डेंजर वेब ना चेंजर कोई हुए को नहीं। यस, तो पर्यूषण पर्व की ये स्वागत की तैयारी है, ये सोसाइटी का आश्रय करना है। किसका? संघीय आश्रय, संघीय संवर, संघीय दिर्जरा, संघीय बंध और संघी निर्माण। ये शासन का पर्व है, ये जीवंत शासन का पर्व है, और जिनका त्योहार जीवन

आहे वे जयवंत होते। जिनका त्योहार जयवंत नहीं वे कभी जयवंत होते नहीं। एक सुनहरा अवसर, बी रेडी, और थे क्यों कि प्रेम रा भाषा में समझोला, बुद्धि रा भाषा में समझोला, तब मैं भी थाने वचन दू कि जब तक नगर में है तब तक थकने नजर से भी हंटर नहीं उठाऊला। थे मौको मत दे जो मौको दिए तो फिर मैं हाँ। लेकिन आज दिन तक तो नगर वाले ने मौका दिया नहीं है, है ना? पण ते इस मत समझ लो कि मारे सामने हंटर चलावता नहीं आवे, है ना? थे मौको नहीं दियो म्हणून चलायो कोणी, और श्रेय कि ने भने कोणी है कि ने है थाने ते त्योहार। तीन बातें फिर रिपीट करता हूं। दिव्य मराठी को सवाल पूछना है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं ना, थाने तो फोन माते पूछना है, मैं तो ओपनली पूछ रही हूं। ये नजरअंदाज करने की हिम्मत भविष्य में किसी की होनी नहीं चाहिए। मुझे चुभा और थको, हजमो मजबूत है, मारा हजमो कमजोर है, थे पचाए जाओ। मैं इस बात को पचाता नहीं हूं। 8 तारीख से पर्यूषण पर्व शुरू हो रहा है, 6 तारीख को पर्यूषण पर्व की पूरी स्टोरी, कैसे मनाना, क्यों मनाना, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आज इसकी शुरुआत करी है। फिर याद रखना क्या है, ये आश्रव है, ये संवर है, ये निर्जरा है, ये बंद है, और इसका जीव कौन है? संग इसका जीव है। कौन जीव है? संग जीव है। बस 3 मिनट में एक प्रिंसिपल तुम्हारे पास दे रहा हूं, उसको समझ लेना। सामान्य केवली और तीर्थंकर परमात्मा में अंतर क्या होता है? शार्प करें बहुत थोड़ा सा। सामान्य केवली और तीर्थंकर में अंतर क्या होता है? सामान्य केवली के पास भी केवल ज्ञान होता है, सामान्य केवली के पास भी अनंत श्रद्धा होती है, सामान्य केवली को भी अनंत आनंद होता है, अनंत शक्ति होती है, लेकिन कोई सामान्य केवली दूसरे को चेंज करने में समर्थ नहीं होता है। कोई सामान्य केवली व्यवस्था निर्माण करने का सोच नहीं रखता है, व्यवस्था निर्माण करने के लिए प्रयास नहीं करता है। तीर्थंकर परमात्मा केवल चेंज नहीं होते हैं, चेंजर बनते हैं, और केवल चेंजर बनते नहीं है तो चेंजिंग की सिस्टम बिल्डअप करते हैं। और ये संघ का निर्माता कोई है, इस संघ का दाता कोई है, इस संघ का शास्ता कोई है, तो तीर्थंकर परमात्मा है। और जो संघ का सम्मान नहीं करता वो तीर्थंकर का सम्मान नहीं करता। संघ मीन्स संघीय व्यवस्था, संघ मीन्स संस्था नहीं, संघीय व्यवस्था। ये संघीय व्यवस्था का विषय है, और ये व्यवस्थाएं निर्माण करनी है। गुरुदेव ने श्रमण संघ की व्यवस्था निर्माण करी, यस और नो? यदि उन्होंने श्रमण संघ की व्यवस्था निर्माण नहीं करी होती, सुन लेना नगर वाले ध्यान से, यदि आचार्य भगवंत ने श्रमण संघ की व्यवस्था निर्माण नहीं करी होती तो आज तुम्हारे नगर में गली गली में संप्रदाय के स्थानक होते।
जैसे जोधपुर में है, जैसे ब्यावर में है, और इधर का आदमी उधर नहीं चलता। रतलाम की तो क्या बात कहूं मैं आपसे, हाँ? तुम्हारे में ताकत होगी तो होगा नहीं, और तुम कमजोर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं कभी भी चोरी के लिए चोर को जिम्मेदार नहीं पकड़ता हूं, मालिक गफलत में रहता है तब चोर चोरी करता है, जिम्मेदार मालिक है। गुरुदेव ये पुण्य भूमि तुम्हें सौंप करके गए हैं, और तुम गफलत में रहोगे, तुम कमजोर रहोगे तो किस मुंह से गुरुदेव का जयकारा लगाओगे? ये चैलेंज लेकर के मैं आया हूं। इस धर्म भूमि को संप्रदाय भूमि बनने देना कि नहीं देना, ये परिश्रम पर तय करेगा। क्या चाहते हैं आप? इस संप्रदाय की भूमि बने? यस। अरे ऐसे ऐसे हमने क्षेत्र देखे हैं। पहले एक ही स्थानक था, पहले एक ही स्थानक था, एक ही स्थानक के दो स्थानक हो गए, बीच में दीवार खड़ी कर दी। पहले एक ही स्थानक था और बीच में दीवार खड़ी कर दी, दो स्थानक हो गए। इधर का संत उधर नहीं रुक सकता ना, उधर का संत इधर नहीं रुक सकता। ये नजारे देखने क्या तुमको? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होता है, ऐसा चल रहा है। रतलाम की स्थानक की बात है, ये रतलाम का ही स्थानक है धर्मदास जी का। एक तरफ मानो किसी सुभागमल जी महासाब के परंपरा का कब्जा है, एक तरफ साधु मार्गी का कब्जा है, बीच में केवल दीवार बांधकर खड़ी कर दी। क्या ये नजारे यहां लाने? बोलते जाइए ना, क्या डर लग रहा तुमको? ताको आवाज नहीं जा रहा, ऑनलाइन मारा आवाज जा रही है। यस, इसलिए पर्युषण पर्व, संघ शक्ति का जागरण, संघीय व्यवस्था का निर्माण, संघ गौरव की वृद्धि, ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो कि औरंगजेब के छाती में भी धड़के भर जाए। हेलो, थे इसको सुन रहा कि जिसका सन्नाटा छा गया है ना? और मैं आराम से कह सकता हूं इतिहास को साक्षी रख करके, यदि घर वालों ने गद्दारी नहीं करी होती, यदि घर वालों ने गद्दारी नहीं करी होती तो संभाजी राजे का जो हुआ वो कभी नहीं होता। वो औरंगजेब से नहीं हारे, औरंगजेब उनको नहीं हरा सका। हराने वाले घर के ही थे। इतिहास है, और मैं उम्मीद करता हूं इस भूमि पर ऐसा नहीं होगा। ये टारगेट है परिश्रम पर्व का। घर नहीं बना सकते हो चलेगा, लेकिन गुरुदेव ने जो महल बनाया है उसको तोड़ो तो मत।
रास्ता नहीं बना सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन बने हुए रास्ते को तोड़ो तो मत। और उन्होंने बनाए हुए घर की संभालने की जिम्मेदारी तो लो। तो आश्रम संवर निर्जरा बंद और मोक्ष चलेगा किस आयाम में? संघी आयाम में। आमंत्रण है कल से इस कार्यक्रम के लिए। ऐसा मेरा पहले विचार था कि 6 तारीख से शुरू करूंगा, लेकिन आज ही शुरुआत हो गई है, तो कल से मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा कि हे घर में मुझे पूछ रही हूं मैं, मुझे हे कि लाओनी पड़ेगा, लाओनी पड़ेगा। हाँ चलेगा, चलो ओके ठीक। नो एडजस्टमेंट नहीं है। मुझे मालूम है कि उसी साड़ी इतनी मिलनी को नहीं, मनुन में स्वीकार कर रही हूं। हाँ, क्योंकि मार्केट में कस्टमर नहीं तो बने को नहीं ना। लेकिन ये रंगी बिरंगी तो चलने नहीं दूंगा, ये पक्का रहेगा, है ना। जो भी रंगी बिरंगी होंगी तीर्थ शिष्य मर सब 8 तारीख से गेट पर खड़े रहेंगे। और वो कैसे प्रेम से बोलते आपको पता है फिर, है ना। मैं सारे हुक्म एक के साथ में लेकर के आया हूं, और उससे नहीं हुआ तो फिर सीधा प्रवर्तक से जो गेट पर बैठा दूंगा चेयर लेकर के। और इतना पक्का भरोसा है कि मैं प्रवर्तक से जो कहूंगा कि वहां पर बिराज तो बिराज जाएंगे, वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये रंगी बिरंगी तो एक रंगी बनना है कि नहीं बनना है, एक रंगी बनना है कि नहीं बनना है। एक रंगी बने बिना संगठन होता है क्या? नहीं ना। बस बस ठीक है, समझदार होते है ना। चदारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तोद्धम मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं भवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भवि प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदवे। आज के सौ कविता बहन के 8 उपास है। पहले संगीता जी ने अपने जन्मदिन पर 21 उपास करे, अब इन्होंने अपने बर्थडे पर 8 उपास करे है। कविता जी के 8 के पचकान, 8 के पचकावनी, पचकावनी है ना। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बढ़ो बढ़ो। उगे सूर्य अठावतम बचकामी वीम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहस्यागारेण महत्तागारेण सब समय अवत्यागारेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज के 28 उपास, 29 है, आज के 29 उपास हो गया। मास खमन का शिखर पास में। ललित जी गुगड़े, आरती बेन सुराना, शिल्पा बेन नहार, खुशी बेन चोरडिया, आज 29 उपास। ओके ठीक, ओके ओके। 3 है, ललित जी गुगड़े, आरती बेन सुराना और शिल्पा नहार, आज के 29 उपास। उगे सुरे 60 वत्तम बचकामी तिवियम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेण महत्ता गरेणम सब समय वत्या गरेण ओसरे ओसरे ओसरे। 29 उपास के पचकान लेने वाले को 28 की शुरुआत कर करके 29 पर पहुंचने वाले को, और निरंतर तपस्या गुरु चरणों में रह करके करने वाले को, आज का एक आसन। उगे सूर्य एक समय के उपरांत 3 आहार के बचकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेणम महत्ता गरेणम सुब समया वत्या गरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का एम बेल
गृहस्थ अम्बिलम बचगामी लवलविलम सत्सांगारिणम महत्तांगारिणम सौसमयम वत्यांगारिणम। ओ सरे ओ सरे ओ सरे, आज का उपवास उगे सूर्य मदटम बस्कामी तिव्यम प्याहरम स्वासनम खैमम सैमम सहस्रांगारेणम महत्तांगारेणम सवसमया वत्यांगारेणम। ओ सरे ओ सरे ओ सरे, एकासन आयंबिल उपास करने वाले को, और आज नगर जिला श्रावक संघीय मंथन शिविर भी है, जो भी उस श्रावक संघ शिविर के लिए आए होंगे उन्होंने वही धाम पर पहुंचना है, वहां कार्यक्रम शुरू होगा।

0: नमस्कार, मी मोनालिसा बागल. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा.
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं. दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम. यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी.

कभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।